0: We'll be back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है. जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है. लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं. ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो. और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है. हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी. ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है. ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं. उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है. चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में. यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है. क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है. अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941. आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान. हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी. कुदरती शिफा, दिल से दुआ. कुदरती शिफा, दिल से दुआ. हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी.
2: ज्वानी द ज्वानको न बगैर निमगिड़ी हो कुचर तक दग ज्वानको पवख बानी गम उनकलेशी नुप रारवान वक्त की दग ज्वान की सासु दखाइस द खराबे दो बाईस जुड़ देशी द ऑयल स्किन और द दानो पारा यो डेर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम तुम चिप सलूर सौ रुपए बानी द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुम चिप द ऑयल स्किन और द एक्नी द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कुम चिप सलूर उरजु की सासुद स्किन एक्नीस पिंपल पो मुकम्मल तो गबाने खत्म ही और ये वाज़ दाना द दग दानों चकम दागुन दी अगर हम पो मुकम्मल तो गबाने खत्म ही की पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्फ्यूलिक एसिड टी ट्री ऑयल और क्लिंडा माइसिन कुम ची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुम ची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उसपो की दनन दनन स्तासु दाने और दानु दागुना पर मुकम्मल तो गबानी खत्म ही नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देर मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.

0: We'll be back, right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ, कुदरती शिफा।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन 94 FM।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नंद शुरु रस्ता आओ दे 2018 मिलादी काल दा सितंबर दे म्याश्ते दुए मनेटा दा दा FM 94 रेडियो दिलबर सवाबी दे ददी वक्त खबरों सरा जरूर छानियम तोलो नावल उड़ान दिखो सर खबरों। वजीर आजम शहबाज शरीफ और किर्गिजिस्तान सदर नूर चाह फारूक दरमियान से मुलाकात शवे दे द्वाड़ी जाड़ी को तरह गरे मखनीबी पशमूल मुख्तलिफ शोबों के ताउन बांधे इतफाक शवे दे। खैबर पख्तूनख्वा की दर्शम अगस्त ने तरदीद मशवे बारानों सैलाबों दौरान मुख्तलिफ पेखों की दो तनान बहक रसी दिली दी। सवाबे की दोसनी बारान लामला द गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 3 वदाने तडेर ज्यात जियान रसी दिली दी। द सवाबे असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर यमुना सना द टोपे खड़ो कोटा काजवे दौर खड़ी दो दो बू बहाव और तेजे मोइने खड़ी दा। खैबर पख्तूनख्वा पशमूल टोल मल्क की द बदम नए वाकयात और टारगेट किलिंग पेखो की इजाफा रिकॉर्ड शेवेदा। चार सदे की दवाब डफ दफ्तर की ओ मशर सड़ी द 500 रुपो जुर्माने खबर और दो रुस्तु द अजर दौरे लामल पहाक रसी दिली दी। मल के रवान ग्राने शर की नूर इजाफर अगली तो उग्रानी यो वारे ब्या डबल डिजिट हद क्रॉस खड़े दे। रूस सदर व्लादिमीर प्यूटिन वही दी दी ईरान दखपल मफादा तो आओ आजाद है जंग कवि। आओ पाकिस्तान वोमेन क्रिकेट टीम द एशिया T20 कप की थाईलैंड द पिंज देश रंजुन शिखस्तर खड़े दे। दाऊ सर खबरों नौस्त खबरों नो तफसील उड़ान दे कहू द बुलेटिन नागाज द मुहिम खबर ने कहू। वजीर आजम शहबाज शरीफ और द किर्गिजिस्तान सदर नूर शाह फारूक दरमियान से मुलाकात सवे दे दगा दौरान द्वाड़ी जाड़ी को तरह गरे मखनीबी पशमूल मुख्तलिफ शोबों की ताउन बांधे इतफाक सवे दे। वजीर आजम द द्वाड़ मुल्कों दरमियान ट्रांजिट ट्रेड द मुआहदे हर खले कड़ी दी वही ली दी किर्गिजिस्तान सर तजारत 2 अरब डॉलर त सेवा कबुल ग्वाड़ू दिली दी। द हादसे द सूबे धीर मर्दान मुमन सवाबे और शांगला की रिपोर्ट शेवी दी। सवाबे की दोसनी बारान लामल द गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 3 वदाने त अडेर ज्यात जियान रसी दिली दी। द सेमीस पदी द तशवीश इजहार कड़ी दी और द मुतल इदारों तालीम महकमे और सूबाई हुकूमत ने पुख्ता न कड़ी दा चिद स्कूल वदाने दी पौफोरी तो गिर शी खराब वदाने की द माशुमान वक्त तेरवल और सबक वेल द खतरे न खाली न दी। द सवाबे असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर यमुना सना द टोपे खड़ा और कोटा काजवे दौर कड़ी दा आओ दो बू बहाव और तेजे मोइने कड़ी दा दग दौरान पत्तीज उबो के पुल क्रॉस कवन की तनान निवली शेवी दी। पुलिस अपील शवी दी जिद कम खड़ून पौ पुलून उबरा वोड़ी दिली दी पहागे स वक्त हम द पुलून माती दिशी पदी दे तक रातक सखा डेढ़ उकड़ी। सवाबे गदुन बाद खड़ की दजियातु सैलाब भी उबो लामला यो गार्डन खते वो चपके हस्पताल तोड़े की दुन की यो मरीज वो पैतला मिलावे दो असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर यमुना सना रसे दिले वो फोरी तो गए रेस्क्यू अहलकारों ते हिदायत जारी करी वो एम्बुलेंस की मरीज हस्पताल तो मुंतकिल करी। खैबर पख्तूनख्वा पशमूल टोल मल की द बदम नए वाकयात और टारगेट किलिंग पेखों के इजाफा रिकॉर्ड शविदा। अगस्त में आश दौरान द बदम नए यौसल नहनवी हमलों की यौसल अतबन जोस कसान मुड़े शवि वो द जुलाई में आश पर मुकाबला की अगस्त में आश दौरान तरह गरे हमलों की द मरग शोबले इशारा कमावा। दो पेखबर इंसदाद करप्शन अदालत तगनम स्कैंडल के ककड़ मुलजिम उस्मान आबिद द जमानत दरखास्त मुस्तरद करी दी और हगवी पर जमानत बांधी द खुशी कबलो सख इनकार कर दी। जज आसिफ रशीद दी मुकदमे समात कड़े वो पमुलजिम उवल सवा देश टन द गनम बटवल इल्जाम दी।

मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पे।

0: right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: ਤੋਲੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਣਤਾ ਖੁਸੂਸੀ ਇਤਲਾ ਇਜਤਮਾ ਸੀਰਤ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹਰ ਕਾਲ ਪਸ਼ਾਨਦਾਜ਼ ਲਹੁਮ ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੀਗੀ ਖਪਾ ਅਕੀਦਤ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਸਰਾ ਪਲਸਮ ਸਿਤੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਪੋਰਸ ਔਰ ਦਾ ਜੁਮੇ ਵਾਰੇ ਕੀ ਪਸ਼ਪਾ ਬਾਂਧੇ ਜ਼ੀਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਬੂ ਕਾਸਿਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਬਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਚਿਪਦੀ ਇਜਤਮਾ ਕਿਵਾ ਦਮਲਕ ਨੁਮੋੜੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਔਰ ਨਾਤ ਖਾਨਾਨ ਬਰਖ ਅਖਲੀ ਚਿਪਾਹੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਬਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਹੱਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾਨਾ ਪੀਰ ਮੁਫਤੀ ਗੌਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰ ਸਦੀ ਤੰਗੀਨਾ ਪੀਰ ਕਾਰੀ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਸਬਾਕ ਸ਼ਰੀਫ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾਨਾ ਲਦੀਨ ਇਲਾਵਾ ਮੌਲਾਨਾ ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੇਖਵਰਨਾ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੀ ਅਲੀ ਹੱਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੋਟਾ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਬਖਸੂਸੀ ਖਿਤਾਬ ਕਈ ਦੇ ਸਰਾ ਸਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਥ ਖਾਨਾਨ ਚਿਪਕੀ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਹਨਫੀ ਮਕਬਲੀ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਯੂਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨੂਰ ਮਜ਼ੀਦ ਯੋਸ਼ਮਾਰ ਨਾਥ ਖਾਨਾਨ ਬ ਨਾਥ ਖਾਨੀ ਕਵੀ ਬਾਸਟੁਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਵਾਸਤ
3: ਰੇਡੀਓ ਦਿਲ ਪਰ ਆਪਕੇ ਸੰਗ ਸੰਗ
4: ਯੇ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਦਿਲ ਪਰ ਆਪਕੀ ਦਿਲ ਕੀ ਆਵਾਜ਼।

सजादा तो बुढ़ा वाली उदा सूचना मका मस्क मुकम्मल शिक मुकम्मल खबर खत्मा यार निमगड़े ज्वंत स्वीर भी मुकम्मल नहीं।